0: होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स के अभिकर्ता बनाऊ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

0: एक्सट्रीम इमेजिंग टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी
1: रेडियो धादिङ समय संकेत
2: अहिले बिहानको 8 बज्यो

0: छैन, ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स के अभिकर्ता बनाऊ।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड।
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: स्ट्रिंग इमेजिंग टाइम टेक आइए ठीक एक बजे को था एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
1: रेडियो धारी समय संकेत
2: अहिले दिउँसोको एक बज्यो
3: शिवम सीमेंट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्दै सिर ठाडो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा

0: ढुक ढुक होइन ढुक्को हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स के अभिकर्ता बनाऊ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

हमरो भालो लेकिन अगी नीति योजनामा किसकियो मसी सब लेते लाला आत्मा।

0: समय पर्याप्त दिए
1: मालद्वार को वरिष्ठ डाक्टर
0: ठूलो संख्या नया छ
2: संसद में पार्टी गत रूप में अगर तब
3: प्रश्न
2: होगा कि संसद में अथवा अभी पुराना भूमिका